पौड़ी छिते अंदर सबको वेग डी हेड चलाएंदा आपे दे बढ़िया या आप ही कर्म कराएंदा वडो वड़ा वड़ में दिनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर पट्टी जे कर

0: दरबार मित्र दरबार सत्यम सनरंकार
1: लक्ष्मी
0: गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण गुरु अवतार जगमग ज्योति बिराजरी श्री अपन ग्रापार सच

कई कोक का भणंत कई वेद भेद का हंत कई शास्त्र से मृत बखान कहूं कथत ही सो पुराण कई

करता करीम सुवे रास करहीम ओए दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही किसे सब एक गुर देवे एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पया नेक को भ्रमाव है देवता देव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आप को रलाओ है अल्लाह अभेक सोई पुराण यो कुरान ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे जैसे एक नद ते तरंग कूट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे केते कछ मछ केते उनको करत भच केते अच वच होए सब पच उड़ जाएंगे केते नब बीज अच पच को करेंगे भच के तक प्रतच होए पच

तेज लीन ताहि तय उपज सब ताहि में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डूबत कित आग में जरत है। कित कंगवासी कित मदीना मकानी वासी के तक उदासी के फरमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअप चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड्डे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार बूझ हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मडी मटली पारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

रूपे अखंड प्रतापाद अच्छा विभूते न जन्मंग न वर्णंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सने हंस नाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे ब्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न वित्र सुभूते भविखे भवाने अचित्रे न रायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नी अच्छयाद अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग भय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न गायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न वायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध बिरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे अयुक्तंग छयाद अविक्ते यथापे विभुक्तंग छयाद अच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न कर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो वाद रूपे नमो वाद रूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के।

कहूँ जज विद्याधरे मानवी हूँ, कहूँ राजसी हूँ, कहूँ राज कन्या, कहूँ शिष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या, कहूँ वेद विद्या, कहूँ व्योम वाणी, कहूँ कोक की काव कथा कहानी, कहूँ अद्र सारंग, कहूँ भद्र रूपं, कहूँ मद्र वाणी, कहूँ चुद्र स्वरूपं, कहूँ वेद विद्या, कहूँ काव रूपं, कहूँ चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं, कहूँ परम पुराण को पार पावे, कहूँ बैठ पुराण के गीत गावे, कहूँ शुद्ध से कं, कहूँ ब्रह्म धर्मं, कहूँ वृद्ध अवस्था, कहूँ बाल कर्मं, कहूँ ज्वाल स्वरूपं, जरा रहत देहं, कहूँ नेह देहं, कहूँ त्याग ग्रेहं, कहूँ जोग भोगं, कहूँ रोग रागं, कहूँ रोग हर्ता, कहूँ भोग त्यागं, कहूँ राज सायं, कहूँ राज रीतं, कहूँ पूर्ण

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अनासन तुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंशात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाप नहीं बर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल व्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अच्छा अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन शीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मद पावक चुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब कई अगन होत्र कई पवन हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साक पय पत्र फच्छ नहीं तद देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधरा बरीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नैक दास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई कर्तवीर विद्या विचार नहीं तदप्तास पायतन पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ करत जछ गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सा सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जन निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जोग कल्पंग प्रजंत नहीं तद्दप्तास पायत न अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तद्दप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन त्वा प्रसाद तोटक छंद जय जम्पह जुकण जुह जुअंग भय कंपह मेर पयाल भुअंग तप ताप सर्व जलेर थलंधन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद

दीन जमीन जमा जय रचंग सर्व मकी नमका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचयंग क्षत्रि छत्र सितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नव खंड सचयो रज तामस तेज तेज गियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नकंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव वेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेतज उद भुजंग किए देवा देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जे तात न मात न ब्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुअंग जे जम पह किन्नर जछ जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाज रथाधिक पांद गणंग भव भूत भविख भवान तुअंग जेह अंडज सेतज जे रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा आकाश निवासितंग रज रोज एकादश चंद्र वृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रजे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूता भूत छूत मतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेग रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आद सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाचे भुजंग रचे मन माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कदेव अनंत कह जय भूत अभूत न भेद रह जय वेद पुराण कदेव जपै सुत सिंधा दो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करै नहीं नैक कृपा निध पान परै जय फोकड़ धर्म सवै तज है एक चित्त कृपा निध को जप है तेउ या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कूट प्रति इम वेद उचारत सार सुति जो वारस के जस के रस है त्यो भूल न काल फंदा फस है त्व प्रसाद नाराज छंद अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सता भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अचिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोग दाग दग है अभूत भ्रम भेक है न तात मात जात है न पात चिहन वरण है अदेक सेक भेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है जिमी जमान के बिके सदीव करम भरम है अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर मैं विशेख अन्न मानिए न जंत्र मैं न तंत्र मैं न मंत्र बस आवई पुराण या कुरान नेत नेत कै बतावई न करम मैं न धर्म मैं न भरम मैं बताइए गंज आदि देव है कहो सो कैस पाइये जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाट है न घाट बाट होत है नहान है न बान है समान रूप जानिए मकीन यो मकान अप्रमाण तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न दात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न सार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोज है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ

रूप राग नारेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध पुरक सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्रण तंत्र जाको आद पुरक अपार हस्तगीट विखे बस सब ठौर में निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर विखे रमे उजह चक्र चिहन न चित्र आद देव उदार मूर्त।

जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही शिव शक्र ओम खुचार सर्व सपत पतार के दर जाप ही जह जाप आद देवा गाद तेजा नाद मूर्त अताप जंत्र मंत्रण आवई कर तंत्र मंत्रण कीन सर्व ठौर रहे हो विराज थे राज राज प्रवीन जाच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैसनंके बिखे विराज सूद्र भी वह नाहे गूढ़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से स्वरूप रात दिवस न मध्य उर्द न भूम का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानिए जह जोत शेष नाम सहंस फन नह नेत पूरण होत सोध सोध हटे सभा सुर विरोध दानव सर्व गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त बड़त थके महाकव गर्द गाड़ अनंत हार हार कहो सबो मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखियो न सेवक तेव देव दानो मूढ़ मानो जच न जान जेब भूत बप भवान भूपद आदनाथ अनाथ अगन बाज लेथले में सर्व ठौर निवास देह गेह ने सने अबेह नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयालत वेख चक्र चिहन न बरन जाको जात पात न भेख रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी याद देवपाल दीन बंध प्रवीण श्री बल सर्व को करतार बरन चिहन न चक्र जाको चक्र चिहन आकार जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन दुष्ट गंजन शत्रु वंजन परम पुरक प्रमाथ दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ कर्ता जगत मय जय गात भूत भव भवेख भवान प्रमाण देव गंज अदंत अनाथ श्रीपद परम पुरख अभंज धर्म के अन करम जेत कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मछ कछ अपार भूम का जले थले मेहमानीय जय नाम दुष्ट हर्ता पुष्ट कर्ता श्रेष्ठ हर्ता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ कर्ण दयाल लाल गोबिंद मित्र बालक शत्रु खालक दीन दयाल मुकंद अघ और दंडन दुष्ट

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूम काजले थले मह जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता श्रव मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटेन्द्र उपेन्द्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद बेव न पावे शिव रुद्र ओम कुचार कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास नक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुंचकृत भय मुखचार आद अंत न मध्य जाको भूत भव भवान सत द्वापर तृतीय कलयुग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हर हर थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यासक मोन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोद सोद थके महासुर

दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन दुष्ट निकंदन आदि वृते चरा सुर मारण पत दो धारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सी मैं खासुर वर्धन रंभक वर्धन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप दे चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र

भर भवंगे भुजा फरंगे तेज बरंग लंकुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखण दमके अत्सि झमके फुंक फनंग जय जय होशी मैखा सुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकण धुजा फरंकण फणि फुंकारण जोध जिते सरदार विवरखण दुर्जन धड़कन दोष पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय होशी मैखा सुर मर्दन भूमा कासल उर्दे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर अचंजुद ब्रह्मा चंड नरा चंद्रम प्रते श्रोणंत अचिंत्य नल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय होशी मैखा सुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अख ओख निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणि अर्फुंगारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय होशी मैखा सुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर जमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रभ मथे दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते मनुज मतंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्टभुजे जय जय होशी मैखा सुर मर्दन भरम विनाशन धरम दुजे गुंगुरु घमंकण सहस्र झमंकण फणियर फुंकारण धरम दुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुध सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय होशी मैखा सुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय होशी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटे निवारण धम उदारण तेज प्रकरखण तुंद तपय दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी सहस्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय होशी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज विलोचन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से सुब्र सुभा से दुष्ट क्रसे चंचला प्रहंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होशी मैखा सुर मर्दन आद अनाद का दुर्धंग घंट का विराजे रुण झुन बाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिक भाजे सुको बराजे मथ उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिज्जे सब न भज्जे रूह रणंग जय जय होशी मैखा सुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर प्रते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल बाजयंती शत्रु मथंती दोष प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होशी मैखा सुर मर्दन आदि जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते बृड़लाज बिहंडन चक्षुर्दन

दामनी प्रकाशे उन तरना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकर खंड सर वर वर खंड दुष्ट वर खंड बितल तले अष्टायत बाहन बोलने वाहन संत बनाहन गुड़ गते जय जय होशी मैं घासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय होशी मैं खासुन मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायत चमकण सस्र जमकण दामिन दमकण आद वृते डुक डुकी दमंके बाघ बबंके भुजा फरंके शुद्ध कते जय जय होशी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण वति दोधारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चार नरक निवारे वति दोधारे मुंड मथे जय जय होशी मैं खासुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दन दान वर्दन बिडाल बधे सरधार विपरकन दुर्जन धरकन अतुल अमरकन धर्म दुजे धूमराज विदुंसन श्रुणत चुनसन सुंभन।

तुम कहो देव सर्वं विचार जिम की हो आप करते पसार जद्दप भूतन भय आनंद तो कहो जथावत रहन तंत करता करीम कादर कृपाल याद वह अभूतन भय दयाल दाता तुरंत दुख दोख रहत जे नेत नेत सब वेद कहत कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वय कै लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय अना सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाथ जलधर प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अवचल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भेग कहे नाम दास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चयन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग विरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल महीप बंतन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोंग तहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद चुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतु बारगनी मन गारे पछ पशु नक नाग नरा दिव सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत नहार दाहत है दुख दोखन कौ दल दुजन के बल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम के प्रीत संभार पार न पाए सके पदमापद वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराज करो गुरुहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहमेव न भेव लख्यो भ्रमश्यो भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यु किन श्री पदमापत पाए आद अनंत अगाद त्वेक्षो भूत भविख भवान अभय है अंत विहीन नातम अपदाग दुख छिद्र छय है लोगन के करता हरता जल मैथल मै भरता प्रव्य है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद्मापते है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन देह विरक्त के अच्छा है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद्मापत लय है रोगंते अर सोगंते जल जोगंते वो भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत तन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दे कर पाप संभूहन भेटन पावे और की बात कहा कह तो सौ सो पेट ही के पट बीच बचावे जाछ भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा का सपताल प्रसादर जाछ भुजंग सब है सिरन्यावे पाए सके नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो वेद कते न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनाथ सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान भेद नृपान सब बजहारे भेद न पाय सके उन भेद को खेदत है अंछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे याद नादे कद वैख जप्यो तिन ही कुलतारे तीर्थ गोट किए स्नान दिए बोदान महाव्रत धारे देश फिर कर भेष बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोड करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल हैं दान के दिवैया महामान के बढ़िया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल हैं जुद के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय द्यावे गोर गर देजी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना कितेक बांधे आर पके आर बी आराध तेरे नाम है
फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मर टाम गल तेरी मन सो तपस्या करे देड़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहले मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीर्ष ने आवे ते बते दे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तोहे जायो तिन्ह पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सुफलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन रंग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हदि की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहि चिड्डी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससुरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महाधीन किते व्यासे प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जश कहियत है। करते हैं विचार पैन पूर्ण को पावे पार ताहि ते अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे अपार के बखानी है। अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूं न जात जा की बाप हूं न मायता की पूर्ण प्रभा की सुछटा के अनुमानी है। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूं को तर है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमद को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छा अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गनिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता के वासी है। जो हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है न नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई ये न पार पारावार हूं को पार जाको की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी हलब विद्या पूर्वी न पार पावे सत्यानाश है। देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभिवनाथ अद्वै विनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है धरैया द्रुम छाल के। कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसे छीरावत छाछ कैसे छतरा नेर छपा कर कैसे छब काल इंद्र के कूल के। हंसनी से सिहा रूम ही रसी हुसैनाबाद गंगा कैसे धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सूरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के। चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चंदागढ़ की रत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोहियत है। हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है। फकरी कंधारी गोर कखरी गर्दे जाचारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं विराजे जहां जहां जाइयत है। पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र ते अतापी

0: पैगा अली बाबा बोला सिंह दी नहीं सिंह दी दा
1: बोले
0: पैगा अली बाबा बोला सिंह दी नहीं सिंह दी दा
1: बोले।

गणंगांध्रेयंग चरे चारणेयंग हसे सिद्ध वृद्धंग मचे बीर क्रुद्धंग डका डक डक हक हक हक पका पुक फेरी डमक डाम डेरी महावीर गाजे नमकनाथ बाजे तहरा गोम गजे दुर्गा दैत बरजे विजय शांत जेतक बाण चले अर ओर ते फूल की माल हवे कंठ विराजय दानव पुंगव पेख अचंभव छोड़ बजरण एक न गाजे कुंजर पुंज गिरेत है थौर परे सब श्रवण वैग्न ताजे जनक नीरद मत छपे परमपू दरते पायते नग पाजे मनोहर छंद श्री जगनाथ कमान लै हाथ परमात्म संख सृजियो जब युद्ध अंगात सैन संघारत सुर बबकत सिंह प्रमयो रण क्रोध कौच भेद अभेद तो अंग कौच भेद अभेद तो अंग सुरंग उतंग सुशोभित सुधंग मन विशाल बिड़वा नल ज्वाल समुद्र के मत विराज कोदंग विजय छंद पूर रही पूर तनोर तोहन पुतूर उड़ी नमंडल शायो तूर नूर परे मुख मार किरे रण हुरण हेर हियो हुलसायो पूरण रोस परे अर तूरण पूर परे रण भूम सुभायो चूर परे अर रूरे गिरे पाट चूरण जनक बैद मनायो संगीत भुजंग प्रयात छंद कागड़ दंग काती कटारी कड़ाकंग कागड़ दंग तीरंग तुपकंग तड़ाकंग झागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे गागड़ दंगा जी महा गज गाजे सागड़ दंग सूरंग कागड़ दंग गोपंग पागड़ दंग प्रभंग रणंग पावरूपंग सागड़ दंग शास्त्रंग झागड़ दंग चार बागड़ दंग बीरंग दागड़ दंग डकार झागड़ दंग चौपे बागड़ दंग बीरंग मागड़ दंग मारे तंग तछ तीरंग गागड़ दंग जी सुबजे गहीर कागड़ दंग व्यान कथे कथीर दागड़ दंग दानो पागड़ दंग भाजे गागड़ दंग गाजी जागड़ दंग गाजे छागड़ दंग छा चुरे प्रेषड़ा के तागड़ दंग तीरंग तो पक्कंग तड़ा के गागड़ दंग गोमाए गजे गही रंग सागत संखंग ना चा नागड़ दंग नफीरंग बागड़ दंग बाजे बजे बीर खे तंग नागड़ दंग नाचे सो भूतंग प्रेतंग तागड़ दंग तीरंग बागड़ दंग बाणंग कागड़ दंग काती कटारी कृपंग नागड़ दंग नना दंग बागड़ दंग बाजे सागड़ दंग सूरंग बागड़ दंग बाजे सागड़ दंग संखंग नागड़ दंग नागड़ दंग नफीरंग गागड़ दंग गोमाए गजे गही रंग नागड़ दंग नगारे बागड़ दंग बाजे जागड़ दंग जोधा गागड़ दंग गाजे नराज छंद जितेक रूप धारियंग तितेक देव मारियंग जितेक रूप धारही तित्यो दुर्गा सिंगारही जितेक शास्त्र वाचरे प्रवास रोन के परे जितेक बिंदु का गिरे सुपान काल का करे रसावल छंद वो श्रोण ही नंग पयो अंग शीनंग रियो अंत चुमंग मनो मेघ भूमंग सबै देव हर खे सुमंग तार बरखे रक्त बिंद मारे सबै संत उबारे एत श्री बचित नाटके चंडी चरित्रे रक्त बीरज बत है चतुर्थी आय संपूर्ण मासु मस्ता वजोम आथ निसोम जुद कथनंग दोहरा सोम निसोम सुनियो जबै रक्त बीज को नास आप चढ़त पे जोर दल सजे पलस अर पास भुजंग प्रयाद छंद चढ़े सुंभ न सुंभ सूरा अपारंग उठे नद नातंग सुतौ सातुकारंग पई अष्ट सह कोसलौ छत्र छायंग पजे चंड मुंडंग पजे चंद सूरंग डरियो देवरायंग पका पुंग पेरी डका डोंक ढोलंग फटी नख सिंगंग मुखंग डढ कोलंग डमा डम डवरू डका डोंक डंकंग रड़े गृद बृदंग कलकार कंकंग खुरंग खे उठी रहो गैण पूरंग दले सिद्ध बिधंग पय पब चूरंग सुनो श्रोण काली गए शस्त्र पाणंग किलकार जेमी हने जंग जवान रसावल छंद गजे वीर गाजी तुजरे तुंद ताजी मह खवास करखे संघ धार बरखे तह सिंह गजियो महा संघ बजियो रहो नाद पूरंग शुही गैण तुरंग सबै शस्त्र साजे कणंग जेम गाजे चले तेज तय कह अनंत शस्त्र लै कह चौं ओर टूके मुखंग मार कूके अनंग शस्त्र बजे महावीर गजे मुखंग नैन रक्तंग तरे बाण सकतंग किए क्रोध उठे सरंग भ्रष्ट बुठे किते दुष्ट कूटे अनंत शस्त्र छूटे करी बाण बरखंग परी देव हरखंग बेली बिंद्रम छंद कह कहत कुकत कंकियंग बह बहत वीर सो बंकियंग लह लहत बाण कृपाणयंग गह गहत प्रेत मसाणयंग डह डहत डवर डमंकियंग लह लहत तेग त्रमंकियंग त्रम त्रमत सांग तमकियंग बबकंत वीर सो बंकियंग शुडकंत बाणक माणयंग हरंत खेत खतराणयंग डहकंत डामर डंकणी कह कहत कुकत जुगणी उफटंत श्रोणत शिछयंग बरखंत सहायक तिछयंग बबकंत वीर अनेकयंग फिकरंत सियार बसेखयंग हरखंत श्रोणत रंगणी बहरंत देव भंगणी बबकंत के हरडोलही रण रंग भंग कलोलही डम ढमत ढोल टमकयंग धम धमत संग त्रमकयंग बह बहत जो क्रोध कृपाणयंग जुझंत जोत जवाणयंग दोहरा भजी चमू सब दानवी सुम निरख निज नैणा
ਨਿਕਟ ਵਿਗੜ ਪੜ ਜੇ ਹੁਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤ ਬੁੱਲਿਓ ਬੈਨ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਨਿਸੁੰਭ ਸੁੰਭ ਕੋਪ ਕੈ ਪਠਿਓ ਸੁਭਾਵ ਰੂਪ ਕੈ ਕਹਿਓ ਕਿ ਸ਼ੀਘਰ ਜਾਈਓ ਦੁਰਗਾਹੇ ਬਾਂਧ ਲਿਆਈਓ ਚੜਿਓ ਸੁਸੈਣ ਸਜ ਕੈ ਸਕੋਪ ਸੂਰ ਗਜ ਕੈ ਉਠੇ ਬਜੰਦਰ ਬਾਜ ਕੈ ਚਲਿਓ ਸੁਰੇਸ ਭਾਜ ਕੈ ਅਨੰਤ ਸੂਰ ਸੰਗ ਲੈ ਚਲਿਓ ਸੁਧੁੰਦ ਬੀਨ ਦੈ ਹਕਾਰ ਸੂਰਮਾ ਪਰੇ ਬਿਲੋਕ ਦੇਵਤਾ ਡਰੇ ਮਦਭਾਰ ਛੰਦ ਕੰਪਿਓ ਸੁਰੇਸ ਬੋਲਿਓ ਮਹੇਸ਼ ਕਿੰਨੋ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜੁਝਾਰ ਕੀ ਜੈ ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਜਾਂਤੇ ਸੋ ਮਾਏ ਜੀ ਤੈ ਬਨਾਏ ਸਖਤੈ ਨਿਕਾਰ ਭੇਜੋ ਅਪਾਰ ਸਤਰੂਣ ਜਾਏ ਹਨ ਹੈ ਰਿਸਾਏ ਸੋਈ ਕਾਮ ਕੀਨ ਦੇਵਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਖਤੈ ਨਿਕਾਰ ਭੇਜੀ ਅਪਾਰ ਬਿਰਧ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਚਲੀ ਸੋ ਸਖਤ ਸੀਗਰ ਸੀ ਕਿਰਪਾਣ ਪਾਣ ਧਾਰਕੈ ਉਠੇ ਸੁਗ੍ਰਿਧ ਬ੍ਰਿਧ ਡੌਰ ਡਾਕਣੀ ਡਕਾਰ ਕੈ ਹਸੇ ਸੁਕੰਗ ਬੰਕੇ ਅੰਗ ਬੰਧ ਅੰਧ ਉਠਹੀ ਵਿਸੇਖ ਦੇਵ ਤਾਰੋ ਵੀਰ ਮਾਣ ਧਾਰ ਬੁਠਈ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਸਭੈ ਸਖਤ ਐ ਕੈ ਚਲੀ ਸੀਸ ਨਿਆ ਕੈ ਮਹਾਂ ਅਸਤ੍ਰ ਧਾਰੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਮਾਰੇ ਮੁਖੰਗ ਰਖਤ ਨੈਣੰਗ ਬਕੈ ਬੰਕ ਬੈਣੰਗ ਧਰੇ ਅਸਤ੍ਰ ਪਾਟੰਗ ਕਟਾਰੀ ਕਿਰਪਾਣੰਗ ਉਥੈ ਦੈਤ ਗਾਜੇ ਤੁਰੀ ਨਾਦ ਬਾਜੇ ਤਰੇ ਚਾਰ ਚਰਮੰਗ ਸਰਜੇ ਕਰੂਰ ਬਰਮੰਗ ਚਹੂੰ ਔਰ ਗਰਜੇ ਸਭੈ ਦੇਵ ਲੜਜੇ ਛੁੜੇ ਤੇ ਚਤੀਰੰਗ ਕਟੇ ਚੌਰ ਚੀਰੰਗ ਰਸੰਗ ਰੋਤਰ ਰਤੇ ਮਹਾਂ ਤੇਜ ਤਤੇ ਕਰੀ ਬਾਣ ਬਰਖੰਗ ਭਰੀ ਦੇਵ ਹਰਖੰਗ ਤੇ ਦੇਵ ਮਾਰੇ ਉਤੈ ਸਿੰਘ ਫਾਰੇ ਗਣੰਗ ਗੁੜ ਗਰਜੈ ਸਭੈ ਤੈਤ ਲੜਜੈ ਬਈ ਬਾਣ ਬਰਖਾ ਗਏ ਜੀਤ ਕਰਖਾ ਸਭੈ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਰੇ ਮਈਆ ਸੰਤ ਉਬਾਰੇ ਨਿਸੁੰਭੰਗ ਸੰਘਾਰਿਓ ਦਲ ਦੈਤ ਮਾਰਿਓ ਸਭੈ ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਜੇ ਤੈ ਸਿੰਘ ਗਾਜੇ ਭਈ ਪੋਹਬ ਵਰਖਾ ਗਏ ਜੀਤ ਕਰਖਾ ਜਯੰ ਸੰਤ ਜੰਪੈ ਤਰਸੇ ਦੈਤ ਕੰਪੈ ਹੇਤ ਸ੍ਰੀ ਬਚਨ ਨਾਟਕ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰੇ ਨਿਸੰਬਧ ਹੈ ਪੰਜਵੋਂ ਧਿਆਏ ਸੰਪੂਰਨ ਮਸੁ ਮਸਤ ਅਵਜੋ ਆਤ ਸੋਮ ਚੁਤ ਕਥਨੰ ਭਜੰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਲਘੁ ਪ੍ਰਾਤ ਜੁਝਿਓ ਸੁਨਿਓ ਸੁੰਭ ਰਾਜੰ ਸਚੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰੰ ਚੜਿਓ ਚੌਪ ਉਚਾਯੰ ਪਯੋ ਨਾਦ ਉਚੰਗ ਰਹਿਓ ਪੁਰ ਗੈਣੰ ਤਰਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੈਤ ਕੰਪਿਓ ਤ੍ਰਿਨੈਣੰ ਡਰਿਓ ਚਾਰ ਬਖਤਰੰਗ ਡਰਿਓ ਦੇਵ ਰਾਜੰਗ ਡਿਗੇ ਪਬ ਸਰਬੰਗ ਸਰਜੇ ਪਸ਼ੁਭ ਸਾਜੰ ਪਰੇ ਹੋ ਦੈ ਕੈ ਭਰੇ ਲੋਹ ਕਰੋਹੰਗ ਮਨੋ ਮੇਰ ਹੋ ਸਾਤ ਵੋ ਸਨਿੰਗ ਸੋਹੰਗ ਸਜੋ ਸੈਣ ਸੁਮੰਗਿਓ ਨਾਦ ਉਚੰਗ ਸੁਣੇ ਗਰਭਣੀ ਆਨ ਕੇ ਗਰਭ ਮੁਚੰਗ ਪਰਿਓ ਲੋਹ ਕਰੋਹੰਗ ਉਠੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਚਾਰੰਗ ਚਵੀ ਚਾਵੜਾ ਡਾਕਣੀ ਅੰਗਡਕਾਰੰਗ ਬਏ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਸਰੰਗ ਕਟੇ ਚਰਮ ਬਰਮੰਗ ਭਲੇ ਕੈ ਨਿਭਾਹਿਓ ਭਣੰਗ ਸੁਆਮ ਧਰਮੰਗ ਉਡੀ ਕੂ ਜੀਵੰ ਗਿਰੇ ਚੌਰ ਚੀਰੰਗ ਉਲੇ ਤਛ ਮੁਛੰਗ ਭਰੀ ਗੱਛ ਤੀਰੰਗ ਗਿਰੇ ਅੰਕ ਸੰਗ ਬਾਰੁਣੰਗ ਵੀਰ ਖੇਤੰਗ ਨਚੇ ਕੰਦ ਹੀਣੰ ਕਬੰਧੰ ਅਚੇਤੰਗ ਉਡੈ ਗ੍ਰਿਧ ਬ੍ਰਿਧੰਗ ਰੜੈ ਕੰਕ ਬੰਕੰਗ ਪਕਾ ਭੁੰਕ ਪੇਰੀ ਡਾਹ ਡੂਡੰਕੰਗ ਟਕਾ ਟੁਕ ਟੋਪੰਗ ਟਕਾ ਟੁਕ ਟਾਲੰਗ ਤਛਾ ਮੁਛ ਤੇ ਗੰਗ ਬਕੈ ਬਿਕਰਾਲੰਗ ਹਲਾ ਚਾਲ ਵੀਰੰਗ ਧਮਾ ਧਮ ਸੰਗੰਗ ਪਰੀ ਹਾਲ ਹੂਲੰਗ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਨਾਗੰਗ ਡਕੀ ਡਾਕਣੀ ਜੋਗਣੀਅੰਗ ਬਿਤਾਲੰਗ ਨਚੇ ਕੰਧ ਹੀਣੰਕ ਬੰਧੰਗ ਪਾਲੰਗ ਹਸੇ ਦੇਵ ਸਰਬੰਗ ਰਿਸਿਓ ਦਾਨ ਵੇਸੰਗ ਕਿਧੋ ਅਗਨ ਜਵਾਲੰਗ ਪਯੋ ਆਪ ਵੇਸੰਗ ਦੋਹਰਾ ਸੁੰਭਾ ਸੁਰ ਜੇਤਿਕ ਅਸੁਰ ਬਠੇ ਕੋਪ ਬਢਾਏ ਤੇ ਦੇਵੀ ਸੋਖਤ ਕਰੇ ਬੂੰਦ ਤਬਾਕੀ ਨਿਆਇ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਸੋ ਵੀਰ ਸੈਣ ਸੱਜ ਕੈ ਚੜਿਓ ਸੋ ਕੋਪ ਗੱਜ ਕੈ ਚਲਿਓ ਸੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣ ਕੈ ਪੁਕਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੈ ਸੰਗੀਤ ਮਦਭਾਰ ਛੰਦ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕੜਾਕ ਕਾਗੜਦੰਗ ਤੜਾਕ ਸਾਗੜਦੰਗ ਸੋਬੀਰ ਗਾਗੜਦੰਗ ਹੀਰਾ ਨਾਗੜਦੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੋ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਨਾਗੜਦੰਗ ਨਾਗੜ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਪਾਗੜ ਦੀ ਪਲੰਗ ਤਾਗੜ ਦੀ ਤਮਕ ਲਾਗੜ ਦੀ ਲਹਕ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕਿਰਪਾਣ ਬਾਹੈ ਜਵਾਨ ਖਾਗੜ ਦੀ ਖਤੰਗ ਨਾਗੜ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਛਾਗੜ ਦੀ ਛੁਟੰਦ ਆਗੜ ਦੀ ਉਠੰਦ ਪਾਗੜ ਦੀ ਪਵੰਗ ਸਾਗੜ ਦੀ ਸੁਭੰਗ ਜਾਗੜ ਦੀ ਜਵਾਨ ਝਾਗੜ ਦੀ ਝਾਣ ਝਾਗੜ ਦੀ ਝੜੰਗ ਕਾਗੜ ਦੀ ਕੜੰਗ ਤਾਗੜ ਦੀ ਤੜਾਕ ਝਾਗੜ ਦੀ ਚਟਾਕ ਕਾਗੜ ਦੀ ਕਪਾਕ ਪਾਗੜ ਦੀ ਪਪਾ ਕਾਗੜਦੰਗ ਕਪਾ ਨੱਚੀ ਵਿਕਰਾਲ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਅਨੰਤ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਰੀ ਅੰਗ ਬੇਅੰਤ ਸੁਗਟਾਰੀ ਅੰਗ ਕਬੰਧ ਅੰਧ ਉੱਠੀ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ੇਕ ਮਾਨ ਬੁੱਠੀ ਅੰਗ ਕੜਾ ਕਰਮ ਕੰਗ ਉਦੰਗ ਸੜਾਕ ਸਹਿਥੀ ਜੁਦੰਗ ਬੇਅੰਤ ਮਾਨ ਬਰਖੀ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ੇਕ ਵੀਰ ਬਰਖੀ ਅੰਗ ਸੰਗੀਤ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਕੜਾ ਕੜੀ ਕਿਰਪਾਣ ਅੰਗ ਜਟਾ ਜੁਟੀ ਜੁਆਣ ਅੰਗ ਸੋ ਵੀਰ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜਗੇ ਲੜਾਕ ਲਾਗੜਦੰਗ ਭਗੇ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਛਮੀ ਤੇਗ ਚੱਟੰਗ ਸ਼ੁਰੀ ਸ਼ਿਵਰ ਛੋਟੰਗ ਗੁਰੀ ਗੁਰੰਗ ਗੁਰਜ ਗੱਟੰਗ ਪਿਲੰਗੰ ਪਿਸੱਟੰਗ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰੋਣ ਚੱਟੰਗ ਕਿਤੇ ਸੀਸ ਫੁੱਟੰ ਕਹੂੰ ਹੋ ਛੁੱਟੰਗ ਕਹੂੰ ਵੀਰ ਉੱਠੰ ਕਹੂੰ ਧੂਰ ਲੁੱਟੰਗ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਰੱਟੰਗ ਭਣੈ ਜਸ ਪਟੰਗ ਕਿਤੇ ਪੇਟ ਫਟੰਗ ਭਜੇ ਛਤਰ ਥੱਟੰਗ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਖੱਟੰਗ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੱਟੰਗ ਫਿਰੇ ਜਿਉਂ ਹਰੱਟੰਗ ਸਜੇ ਸੂਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਖਵਾਸ ਤਾਰੇ ਲਏ ਖਗ ਆਰੇ ਮਾਂ ਰੋ ਵਾਰੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਕਾਰੇ
मनो सिंध खारे कई वार गारे सुमारंग उचारे पवानी पिछारे जवा जेम जारे बड़ेई लुजारे हुते जे ही वारे एकंग बार टारे ठमंग ठोक ठारे बली मार डारे टमके टढारे बहे बाननियारे कितै तीर तारे लखे हाथ बारे दीवाने दिदारे हणे भूम पारे कितै सिंह फारे कितै आ बारे जितै दे दैत पारे तितै अंत हारे बड़ेई बड़े हड़ियारे खरेई बरियारे करुअन करारे लपके ललारे अलीरे अरियारे हणे कालकारे भजे रो बारे दोहरा ऐ बिद दुष्ट प्रजार कै शास्त्र आस्त्र कर लीना बाणा बूंद प्रथमै बरख सिंह नाद पुन कीन सावल शांदा सुनियो सुंभ राजंग चढ़े चौंप चायंग सचे शस्त्र पाणंग चढ़े जंग जवानंग लगे ढोल टंके कमाणंग कणके पय नद नादंग तुरंग निर्भखादंग चमकी कृपाणंग हटे तेज वाणंग महावीर हुंके सुनी सान द्रुंके चहुं ओर गर्जे सभै दैत लड़ जाय संतर बरके मैया पाण करके चौपाई जे लय शास्त्र साम हुए तये तिते निधन को प्राप्त पये चमकत पई असन की तारा पपके रुंड मुंड बिगराला दोहरा है गए रथ पैदल कटे बच्यो जीवत ना कोए तब आपे निक्ष्यो नृपत सुम करे सो होए चौपाई शिव दूती इत दुर्गा बुलाई कान लाग नी कह समझाई शिव को भेज दीजिए तहां दैतराज स्थित है जहा शिव दूती जब इम सुन पावा शिवै दूत कर तय पठावा शिव दूती ताते भजनामा जानत सकल पुरख अरबामा शिव कई दैत राज सुन बाता है बित कहो तुमो जगमाता दै दैवन को दै कै ठकुराई कै मांडव हम संग लड़ाई दैत राज ए बात न मानी आप चले जूझन अभिमानी गर्जत काल काल ज्यों जहां प्राप्त पयो असुर पत तहां चमकी तहां असन की तारा नाचे भूत प्रेत बै तारा फरके अंध कबंध अचेता पिबरे भैरव भीम अनेका तुरही ढोल नगारे बाजे भांत भांत जो धारण गाजे डढ़ डफ डमरू डुगडुगी घनी नायन फीरी जात नगरी मधुपहार हुंके के गण तुंके निशान सजे सुबीर गजे गहीर चुके चुके निझक बजे बक सजे सुबह छरे उछा कटे के कान फुटे चवाण सूलंग सड़ाक उठे खड़ाक गजे जुआन बजे निशान सजे गजेंद्र गजे गजेंद्र पजंग प्रियात शानदा फिरे बाजियंग ताजियंग इत उतंग गजे बारुणंग दारुणंग राजपुत्रंग बजे संख फेरी उठे संख नादंग रणंग ए नफीरी तुणंग निर्विखादंग खड़के कृपाणंग सड़कार सीलंग उठी कूजूहंग पई रेल पेलंग रुले तछ मुछंग गिरे चौर चीरंग हाथ मथंग बरम पीरंग सावल शानदा बलि वैर रुझे समुसार जुझे संभारे हथियारिंग बकै मार मारंग सुबह शास्त्र सजे महावीर गजे सरंग ओग छुटे कड़ककार उठे बजे बाद्र तेयंग हसै गांध्र पेयंग चंडा गड जुटे सरंग सांझ फुटे चौं ओर उठे सरंग ब्रिष्ट बुठे करो धी करालंग बकै बिक रालंग भजंग ब्रियात शानदा किते कुठियंग बुठियंग ब्रिष्ट बाणंग रणंग डूलियंग बाज खाली पलाणंग जुजे जोधयंग वीर देवंग अदेवंग सुबे शस्त्र साजा मनु सांत नेवंग गजे गजियंग सर्व सजे पवंगंग तुझ जुधंग जुटियंग जोत छुट्टे खतंगंग तड़के तबलंग चणके कृपाणंग सड़ककार सेलंग रंग के निशानंग टमा टम ढोलंग टला टुक टालंग गाह जूह गजे हजंग हाल चालंग सटा सट सेलंग खाह खून खगंग तुटे चरम बरम उठे नाल अगंग उठे अग नालंग खे खोल खगंग निशा मावसी जान मासान जगंग डकी डाकनी डामरू डौर डकंग नचे वीर बैताल भूतंग पपकंग बेली बिंद्र मशांदा सर्ब सत्र आवत पे जिते सब काट दीन दुर्गा तिते और जेत गडारी अंग ते उगाड़ भूम तारी अंग सर आप काली शांडी अंग सर्वास्त्र सत्र बिहंडी अंग शास्त्रहीन जपै निहार्यो जय शब्द देवन उचार्यो नब मत बाजन बाज ही अवलोक देवा गाज ही लख देव बारंबार ही जय शब्द सर्वकार ही रण कोप काल तराली अंग खट अंग पाण उशाली अंग सिर सुंभ हथ दो छड़ी अंग एक चोट दुष्ट बिहंडी अंग दोहरा जिम सुंभा सुर को हना अधिक कोप कै काल त्यों साधन के सत्र सब चांबत जाहे कराल एत श्री बचे त्रनाट के चंडी चरित्रे सोम बधे कष्ट मोते आए संपूर्ण मस मस्त अफ जो अथ जयकार शब्द कथनंग बेली विद्रम शानदा जय शब्द देव पुकार ही सब फूल फूल अंडार ही कंसार कम कमल्याय कै टीका दियो हर खाई कै चौपाई उस्तत सभु करी पारा ब्रह्म कवच को जाप चारा संत संभूह प्रफुल्लित पाए दुष्ट अरिष्ट नाश पाए गाय साधन को सुख बटे अनेका
दानव दुष्ट ना बाचा एका संत सहाय सदा जग माई जह तह साधन होहे सहाई। देवी जू की उस्ताद पजंग प्रयात शानदार नमो जोग ज्वालंग तरियंग ज्वालंग नमो सुंभ हंती नमो क्रूर कर नमो श्रोण वीर जा वीर जार दनी धूम्र हंती नमो कालका रूप ज्वाला जयंती नमो अमका जंबहा ज्योत रूपा नमो चंड मुर्दान दरी पूप रूपा नमो चाम रंग चीरणी चित्र रूपंग नमो परम प्रज्ञा विराजय अनुपंग नमो परम रूपा नमो क्रूर कर्मा नमो राजसा सातका परम परमा नमो महिक दैत गौ अंतकरणी नमो तोखणी सोखणी सर्व इरणी बिड़ा लाच हंती करु राच काया दिजग दियार दनियंग नमो जोग माया नमो पई रवि भाव गवियंग भवानी नमो जोग ज्वालंग तरी सर्वमानी अधि उर्दवी आप रूपा अपारी रमा रष्टरी काम रूपा कुमारी पवि पावनी पई रवि भीम रूपा नमो हिंगुला पिंगुला यंग अनुपा नमो जुदनी कुरदनी क्रूर कर्मा महा बुद्धनी सिद्धनी सुध कर्मा पति पत्मनी पार्वती परम रूपा सिवी बासवी ब्राह्मी रेदकुपा मिड़ा मार्जनी सूरतवी मोहकर्ता परा पष्टनी पार्वती दुष्ट हरता नमो हिंगुला पिंगुला तोतकाय तोतलायंग नमो कार्तिकयानी शिवा शीतलायंग पवि पार गवियंग नमो शस्त्रपाणंग नमो असतरता नमो तेज मणंग जया अजया चरमणि चामडायंग कृपा काल कायंग नयंग नित नियायंग नमो चापणी चरमणि खड़गपाणंग नमो पाणनी चक्रणी चित्रमाणंग नमो सूलणी सैथणी सैथणी पाण माता नमो ज्ञान विज्ञान की ज्ञान ज्ञाता नमो ओखट सोखणी अंग मृडाली नमो दुष्ट दोखारदनी रूपकाली नमो जोग ज्वाला नमो कार्तिकयानी नमो अंबिका तोतला श्री पवानी नमो दुखदाही नमो दुख हरता नमो शस्त्रिणी अस्त्रणी कर्मकर्ता नमो रिष्टणी पुष्टणी परम ज्वाला नमो तारणी अंग नमो वृद्ध बाला नमो सिंह पाही नमो दाल गाड़ंग नमो खग दगंग चमा चम बाड़ंग नमो रूढ़ गुड़ंग नमो सर्वव्यापी नमो नेत नारायणी दुष्ट खापी नमो रिद रूपंग नमो सिद्ध करणी नमो पोखणी सोखणी सर्वभरणी नमो आर्जनी मार्जनी कालराती नमो जोग ज्वालंग तरी सर्वदात्री नमो परम परमेश्वरी धर्म करणी नई नेत नारायणी दुष्ट दरणी छला अछला ईश्वरी जोग ज्वाली नमो बर्मणी चरमणी क्रूर काली नमो रिचका पूरका प्रास संध्या जिनै मोह कै चौद हूँ लोक बंध्या नमो अंजनी गंजनी सर्व अस्त्रा नमो तरणी उबालनी सर्व शस्त्रा नमो अंजनी गंजनी दुष्ट गर्भा नमो तोखणी पोखणी संसर्भा नमो सक्तनी सूलणी खड़गपाणी नमो तारणी कारणी अंकिरपाणी नमो रूपकाली कपाली आनंदी नमो चंद्रणी पानवी अंगुबिंदी नमो छैल रूपा नमो दुष्ट दरणी नमो कारणी तारणी श्रेष्ठ भरणी नमो हरखणी बरखणी शास्त्र धारा नमो तारणी कारणी अंग अपार नमो जोगणी भोगणी परम प्रज्ञा नमो देव दैत्यायणी देव दुर्गया नमो पौर रूपा नमो चरण नैणा नमो सुलणी सैथणी बकर बैणा नमो वृद्ध बुद्धंगरी जोग ज्वाला नमो चंड मुंडी मिड़ा क्रूर काला नमो दुष्ट पुरुष तारदनी शेम करनी नमो दाड़ गाड़ा तरी दुख्य हरणी नमो शास्त्र बेता नमो शास्त्रगामी नमो जच विद्या तरी पूर्ण गामी दिपंग तापणी जापणी सर्वलोका थपे थापणी था स्थापित खापणी थापणी सर्वसोगा नमो लंकुड़ेसी नमो शक्तपाणी नमो कालका खड़ग पाणी कृपाणी नमो लंकुड़ेसा नमो नागरकोटी नमो कामरूपा कमच्छा करोटी नमो काल रात्रि कपरदी कल्याणी मारिधणी सिद्ध दाती कृपाणी नमो चतुर्बाही नमो अष्टबाहा नमो पोखणी सर्व आलंपनाहा नमो अमका जंबहा कर्तिकयानी मिड़ाली कपरदी नमो श्री पवानी नमो देव अर्ध्यायरनी दुष्ट हंती सीता असीता राजक्रांति आनंदी ज्वाला जयंती अलासी आनंदी नमो पार ब्रह्मी हरिसी मुकंती जयंती नमो मंगला कालकायंग कपाली नमो भद्रकाली शिवायंग दुर्गायंग शिमायंग नमो तात्रियंग सुवाहा सुधायंग नमो शीतलेयंग नमो चरबणी सर्व धर्म तुजायंग नमो हिंगुला पिंगुला अंबकंग नमो दीर्घदाड़ा नमो श्यामवरणी नमो अंजनी गंजनी दैतद्रणी नमो अर्धचंद्रायणी चंद्रचूड़ंग नमो इंद्र ऊर्धा नमो दाड़ गूड़ंग ससंग शेखरी चंद्रपाला भवानी पवि भैरवी पूतराटी कृपानी कलिकारणी कर्मकर्ता कमच्छया परी पद्मनि पूर्णी सर्व इच्छया जया जोगणी जाग्यकर्ता जयंती सुभा स्वामणी श्रेष्ठ जा सत्र हंति पवित्री पुनीता पुराणी परेयंग प्रभि पूर्णी पार ब्रह्मी अजयंग रूपंग अनुपंग नामक ठामंग
ਅਪੀਤੰ ਅਚੀਤੰ ਮਹਾ ਧਰਮ ਧਾਮੰ ਅਛੇਦੰ ਅਪੇਕੰ ਕਰਮੰ ਸੁਧਰਮੰ ਨਮਹ ਨਮੋ ਬਾਣ ਪਾਣੀ ਤਾਰੇ ਚਰਮ ਬਰਨ ਅਜਿੰਗ ਪੇਅੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਤਿਅੰ ਨਿਰੂਪੰ ਨਿਰਵਾਣੰ ਨਿਮਿਤਿਅੰ ਅਕਿਤਿਅੰ ਗੁਰੀ ਗੌਰ ਜਾ ਕਾਮ ਗਾਮੀ ਗੋਪਾਲੀ ਬਲੀ ਬੀਰਣੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਿਆ ਜਵਾਲੀ ਨਮੋ ਸਤਰ ਚਰਬਾਇਣੀ ਗਰਭ ਹਰਣੀ ਨਮੋ ਤੋਖਣੀ ਸੋਖਣੀ ਸਰਵ ਭਰਣੀ ਪਿਲੰਗੀ ਪਵੰਗੀ ਨਮੋ ਚਰ ਚਿਤੰਗੀ ਨਮੋ ਭਾਵਨੀ ਪੂਤ ਹੰਤਾ ਭੜਿੰਗੀ ਨਮੋ ਭੀਮ ਰੂਪਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਭਵੀ ਭਾਵਨੀ ਭਵਿਖਿਆਤਾ ਵਿਧਾਤਾ ਪ੍ਰਭੀ ਪੂਰਣੀ ਪਰਮ ਰੂਪੰ ਪਵਿੱਤਰੀ ਨਵਰੀ ਪੋਖਣੀ ਆਰ ਬ੍ਰਹਮੀ ਗਾਇਤਰੀ ਜਟੀ ਜਵਾਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮੁੰਡੀ ਚਮੁੰਡੀ ਬਰੰਗਦਾਇਣੀ ਦੁਸ਼ਟ ਖੰਡੀ ਅਖੰਡੀ ਸਭੈ ਸੰਤ ਉਪ

रणंग रंग रते सभी रंग पुमंग गिरे जोद मधंग बली चूम चुमंग पुजांग अयो दुंद जुदंग रणंग संख मचंग मनो दो गिरंग जोद जुटे सुप शंकटे मास टुकंग पखे गृद वृद्धंग हसी जोगणी चौसठा सुर सुदंग पुजांग यो उधार बेदंग हते संख बीरंग तजो मच रूपंग सजो सुंदर चीरंग सबै देव थापे कियो दुष्ट नासंग तरे सर्व दानो परे जीव दरा सिंह त्रिपंगी छंद संखा सुर मारे वेद उधारे सत्र संघारे जस लीनो देवेश बुलायो राज बिठायो शत्र फिरायो सुख दीनो कोट बजे बाजे अमरेश्वर गाजे शुभ कर साजे शोक हरे दै कोटक दक्षिणा क्रोर प्रदक्षिणा आन सो मच के पाए परे दी वचन नाटक मच उतर का दंग का दर बधे बहुत काल बीत भयो जब असुर असुर बांस तबै असुर लगे बहु करे बिघादा किनु ना तिने तरंग में सादा सकल देव इकट्ठे तब भये शीर समुद्र जय तो दह गए बहु चिर बस्त भये तै ठामा बिसन सहत ब्रह्मा जे नामा बार बार ही दुखत पुकारत कान परी कल के तुन आरत

अथ सगरीपुरी सहित सुरख गए चौपाई जो यह कथा सुने अर कावै दुख पावत है निकट न आवै बिशन भगत की ये फल होई आदि ब्याच वै सकैना कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़पति प्रथम सुखदावन त्वा प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लवले सुधारा दोहरा नेतर तुंग के चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरण कियो रघुवर कथा प्रसंग साध असाध जानो नहीं बात सुबात विवाद ग्रंथ सकल पूरण कियो भगवत कृपा प्रसंग।

अथ देवी जुकी उस तत्कथन भुजंगी आसन तुम अश्री छथनी आप रूपा तुम अंबिका जम हंधी अनुपा तुम अंबिका शीतला पुतला पृथ्वी तुई मुंड मरती कपड़ी पवानी तुई कालका जल पा राजधानी महाजोग माया तुई ईश्वरी है तुई दे जगत मोमई है तुई रिष्टनी पुष्टनी जोग माया तुई मोह सो चौदहों लोक छाया तुई सुमनै सुम हंति भवानी तुही चौदहों लोकी ज्योत जानी तुई रिष्टनी पुष्टनी शसनी है तुही कष्टनी हतनी असरनी है तुही जोग माया तुही बागवानी तुही अमका जंब हा राजधानी महाजोग माया महाराजधानी पवि पावनी पुत पविंग भवानी चरी आचरणी खेचणी पूपनी है मां भावनी आपनी रूपनी है मां भैरवी पूत ने श्री भवानी पवि पावनी पभ्यंगाली कृपाणी जया अजया हिंगुला पिंगुला है सिवा शीतला मंगला तोतला है तुही अक्षरा पक्षरा बुद्ध बिरधिया तुही भैरवी भूपणी सुत सिधिया मां बाणी आसरणी छात्रतारी तुही तिर उतरवार कती कटारी तुही राजसी सात की तामसी है तुही बालका बृदनिया जुवा है तुही दानवी तुही दानवी देवनी जचनी है तुही किन्नड़ी मछनी गचनी है तुही देवते शेषनी दानवे सात्र है ब्रिष्टनी है तुही अदरपेशा तुही राज राजेश्वरी जोग माया महा जोग अमो सुचौदन लोक स्वयं तुही ब्राह्मी वैष्णवी श्री भवानी तुही वासवी ईश्वरी कर्तिकयानी तुही अमका दुष्ट हा मुंडमाली तुही कष्ट हंती कृपा के कृपाली तुही ब्राह्मणी हुआ भिरंगनाश मानियो हरंगनाश सिंगनी पिछाने तुम्हें बामनी हुआ हिरो लोतिनो लोक माने तुम्हें देव दानों की जछतापे तुम्हें राम हुआ क्या दशा गरीब खंडियो तुम्हें कृष्ण हुआ क्या कंस केसी भी हंडियो तुम्हें जाल पा हुआ बड़ा लाच गाय तुम्हें सोम्ब नय सोम दानो कृपाय दोहरा दास जन कर दास कार दास जान कर दास पर कीजिए कृपा पर आत हाथ है राख में मन करम बचन विचार चौ भई मैं ना गणेश प्रथम मनाऊँ किशन बिशन कब हूने त्याऊँ कान तुने पहचान नतन सौ लागी मोरी पगन सो महाकाल रखवार मारू माँ लू मैं किंगड़ तारू अपना जान करो रखवार बांग हैं कि लाज विचार अपना जान बजाय पर परिया चुन तुम सतन मारे मरिया देख देख जग मैं दो तुले राखा मैं अपन नदले तुम मम करो सदा प्रतवारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब का तुम हो सब राजन कर राजा पे आप गुरी निवाज दास जन कर कृपा करो मैं हर पर मैं तुम अपना जान करो प्रतवारा तुम साहिब मैं किंग कर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम धर्म भगवत को ध्याना बाहर करो कविता विधनाना कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कबले हो सुधारो एत देवी उस्तमाप्त।

हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, खेल बिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस्तुज जा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बा

विस्माद सुपत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद तू विस्माद देखे हाजरा हजूर

0: भै विच गन कढ़ाए बेगार भै विच धरती दबी भार भै विच इंद फ्रैशर भार भै विच राजा धर्म द्वार भै विच सूरज भै विच चंद कह करोड़ी चलत न अंत भै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ भै विच आडाने आकाश भै विच जोत महाबल सूर भै विच आवे जावे पूर सगलिया पौ लिखिया सिर लेख नानक निर्भव निरंकार सच एक महला पहला
1: नानक निर्भव निरंकार होर के तेरा मृवल